मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोका वास्ते जिवे कबीर जी का वचन सी जिहे मरने सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोका दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तो पता नहीं कदों आनी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिहे मरने सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा ही समझा जा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ ले के दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही इह सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तो बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तो बंदा डरदा कहिंदा दी गल ना करो जे मरने सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरा है मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां ओह मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जाती लेकिन एक मौत होर भी ओह है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जाती हौं दी मौत हो जाती ते बंदा इस मौत तों भी डरदा जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया जिन्हों धर्म के मार्ग से जीना आ गया वह शरीर की मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हों चज नाल जीना आ गया है सच्ची गल तो यह है कि चज नाल मरना भी उन्होंने आया है कबीर जी कहते हैं सो मरना गुर शब्द प्रकाशया गुरु के शब्द द्वारा मैनू मरण का पता लग गया है अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण से चित करता है हों करके मरण चित करता है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जाने मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ।

हर मुनि रे चरणा पे ठहर के किस प्यार वाले मन ने अर्दास की थी। नारद जी तुसितानो जो मेरे भगवान के दर्शन जा रहे हो, नारद तुसितानो जिन्हां नूं मेरे भगवान के दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया

प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने किया, क्यों रोंदे है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दियां कुर्बान निकली हैं, ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है कि

आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है। आखो श्री वाहिगुरु। आस्था वाले जीवन विच आस है ना, इंतजार है ना, ए विच बड़ा सुख है, ए विच कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालिक दी याद विच यादा भी पूरियां हो जांदियां। पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है। मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना। हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल बन गया। इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे। प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण। आखो श्री वाहिगुरु।

जिन्नी तुदनू तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्हां ने गुरु नू तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शां प्राप्त करन वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

0: 싸면서 생각할 때 가만히 싸 가스 바스
1: मांगो राम से एक दान आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड पॉज मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स मे माई माइंड Not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उना दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सुची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउण नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहिंदे यह ना पाक है, किथे मंदिर, किथे इस नूं मंदिर वर्गी बना देना सी, किथे इस नूं नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता गुरु साहब आखते हैं, यह डरौनी है, यह काया कहिंदे

अगर इसनों मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विचों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डराणी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़द्या डर लगेगा, यह डराणी बन जाएगी। फिर आखते हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहंदे अगर उसनू नहीं है समझदी

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आशा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ए भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बनती है बड़ियां लंबियां लंबियां, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखदे हैं ये मूर्ख क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लईयां हन, एडिक्शंस बना लईयां हन, सुभाव बना लए हन, अते उन्हां चीजां नूं वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नूं कमजोर कर दियां हन। तो कहिंदे ए मूर्ख भी है।

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान में फिर एक काया दी सर्जरी हुंदियां हैं की कुछ हुंदा है कहिंदे हन ये शरीर ही फिर साडा एनिमी बनता है। बड़ी कमाल की गल महाराज ने बाणी च लिखी है कि यह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनता है साडा विरोधी बनता है। बाणी च आखते हैं इस तरह कहते

जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर इस सरोवर ना बनिया, अगर इसनू असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनू रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनू कोई शेयर नहीं कर सकता, वह दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ये दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच बहुत ही चोट वाली गल करते हैं। कहते हैं ये वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। आखते हैं पंक्ति

सगल शरीर आवत समकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असी पहन लैने हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नूं उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जिहड़ा किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, यह मानुख का शरीर जिहड़ा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर वह नहीं किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, यह बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसको रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजिही, कि मेरी ही जिंदगी अजिही ते नहीं। ए जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐथे तो नहीं पचा बैठा हूं, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नूं इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठाव,

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

मैं बंदा बेखरीद सखा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा जो पिंड सब सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सेना तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

बाहिर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हरन जन का प्रभु अपने का तान, जन को प्रभु अपने का तान।

अपनी कृपा करे चल कमल नाल खड़ा दे किस दिन आन के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

मैं दूजी नहीं थार जिस पे हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना।

हलत पलत प्रभाव सोए कार्य होए सगले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवन जान रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे

0: अल्लाह यार योगी।
1: ख्वाहिश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें, ये दिहाड़ा थोड़े दिन हो लंघे वड़े साहब जाने वाले।

जाके ओंकार के आकार नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नई वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम सिखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान।

के पलीराज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली बात कहूं अश्व होए के बह

मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाही, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभाशीला। खालसा बंद सखा सद डीला, खालसा मेरी जात अरपत। खालसा मेरी जात अरपत, खालसा सो माँ को उत्पत।

खालसा मेरो धर्म अर कर्म खालसा मेरो पेट निज मर्म खालसा मेरो सतगुरु पूरा

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं